साहिब दयाल कृपा करे ता साई कर कराई सी तो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाई सी हुक्म न्यावे प्रमाण तक कसना का मेल पाई सी खस में पावे सो करी मचिंदे।

कर्ता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अबर ना दूजा कोई। आपे कर वेखे मार्ग लाए पाई, तिस बिन अबर ना कोई। जो तुर लिखिया सो कोए ना मेटे पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर का शब्द।

आया गए मशक्त का, नानक ते मुख उजले किति छुटे ना, जिनी नाम ते आया गए मशक्त का।

महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सृष्टि ते करहे उद्दम तू साधु किताई किलविख मैल परे परे हमरा विच हमरी

सत संगत की तूर, सत संगत की तूर, तूर परी उड़ने तरे सत संगत की तूर, परी उड़ने तेरी सब दुर्मत मैल दवाई, बिन भगती नहीं सतगुर पाई है, बिन भगती नहीं सतगुर पाई है, बिन पागा नहीं भगत हरी, बिन पागा सतसंग ना पाइए, कर्म मिले हर नाम हरि। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके कास्त हरिया, सतसंगत की तूर, परी उड़ने तेरी सब दुर्मत मैल गवाई, माधो साधु जन देहो मिलाई, देखत दर्स पाप सब नास ही, पवित्र परम पद पाए सतसंगत की तूर।

जपमल सतनाम सदा सतनाम हलत पलत हलत पलत मुख उजल होई है नित तिहाई है हर पुरख निरंजना नित तिहाई है हर पुरख।

सर्वठार मोह सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जन्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोरा। सगल द्वार का उषाढ़ के गह

होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। पंजा प्यारियां सोहां साहिबजादियां, चालियां मुकतियां हठियां, जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चार कड़ियां ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथे आ रहा, इत देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, वसाहा दान, पुरुषा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तो पंथ नू वसोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नू बख्शो हे नमानियां दे मान, नतानियां दे तान, नियोटियां दी ओटा, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हजूर सबद चौंकी सो दर
ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ।

रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यह संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस यार, और मुए क्या रोइया जो आपा थिर न रहाए। जो उपजय सो बिन सह दुख कर रोए बलाए। जहते उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चितया राम सिमर बैराग। बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पहयान लुटावै। मान मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पहली जै। लिखै कतहे ना छूटियै, खिन खिन भूलनहार। बखसनहार बखसलै, नानक पार उतार। सुकह टल गोर सेविया, अहनिस सहज सोभाए। दर्शन परसे आए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसम दी, नूर अर सोह कुर सोह चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो। सत

हार के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावहे, बिरथी आस न जाई। रहो कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे। आठ पहर हर का जस रवणा, बिखठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करता, संत साध पाए साथी, कारु गहलीन सर्वसो दीन, आप है

धामि अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोहिए, सवना दा विसाहु। सज्जन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसा।

स्वामी शरण परियो दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तोज बिन कौन उदारे स्वामी शरण परियो दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तोज बिन कौन उदारे रहाउ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व

जप जप सगले रोग निवारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सोर जन मिले प्यारे। नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत वछल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कोह नानक किरपा पही, प्रभ पये सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया, करते का होय विचारो। तित कर गाव हो सोहिला, सिवर हो सिर जनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहिला, हों बारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखे गा दे वनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। सांबत साहा लिखिया, मिल कर पाव हो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पाहोचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख बड़ाई तोए। रहाओ बेसोए जसया घड़िया पहरा, थिति वारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप माले आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत फेरी, रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस तब गंध, इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो, आन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग को, होय जाति तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा,
काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंड लखंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद घटे दिन सुरै नारी मन गुरमिल काज सवारी। रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूर। नानक दास इह सुख मांगे मोको कर संतन की तूर। अंतर जामी पुरख बेदाते शरदा मन की पूर। नानक दास इह सुख मांगे मोको कर संतन की तूर।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाय। माया मोह परम पै पुले, सुत धारा सो प्रीत लगाई।

0: सौ चंदा उग भय सूर्य चढ़े हजार। इति चानन होंदया गुरबिन कोरे अंधार महला पहला।
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तलवार जिवें संजे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टे।

0: पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरा करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लग करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: वडी बड़ाई जा वडा नाम वडी बड़ाई जा सच ने आओ वडी बड़ाई जाने चल थाओ वडी बड़ाई जाने आलाओ वडी बड़ाई बुझे सब पाओ वडी बड़ाई जा पुछना दात वडी बड़ाई जा पे आप नानक करना कतनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: जग सच्चे की है कोठरी।

0: पानी विस्मात अग्नि खे डेविडाणी विस्मात धरती विस्मात खाणी विस्मात साध लग है प्राणी विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात भुख विस्मात भोग विस्मात सिफ्त विस्मात सालाह विस्मात उछड़ विस्मात राह विस्मात नेड़ विस्मात दूर विस्मात देख हाज रह पेख विडान रहे विस्मात नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद।

0: नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा
1: जो शगुन ज्ञान शगुन वे शगुन ब्राह्मण है खत्री शगुन सूर शगुन शूद्र शगुन प्रकृत है।

0: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार यकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगत लहने संग हो गुर अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरण तो।
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै

चित चित वो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमा।

0: कहती सुनी रात को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुनों क्या कहो गुरु दे मिलायो पिखिया जेव तू रखे देव रहो जेव तू रखे देव रहो
1: बैर समा सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनकर कयो बहुत सिले सर लड़ो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर नेजा कटो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दोते बेखंडो पल हो पुहाल ते जोतना नृपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सल पन तैं दल जितो इव जुत कर
2: कन हर बूंद बसो रोमावल कुसम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें

0: अब रखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बोसाज। सुदाम अपदा ते रखिया, गिनका पड़ पूरे तहकाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज। सुदाम अपदा ते रखिया, गिनका पड़ पूरे तहकाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
1: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निस बासर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ माने, तुम मलयागर प्रगट सो भास। ध्रुव प्रहलाद कबीरत लोचन, नाम लैत उपजो जो परगास। जेह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास।
2: चित चित वो अरदास कहूं, पर कह भी न सकूं। सर्ब चिंत तुझ पासे, साध संगत हो तकूं। तेरे हुक्म पवे निशान, तो करो साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिष्ट, नाम करता मुख मेवा।

सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमंदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास

इक खिन रह न सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को तारी मन आस, रहा सिमरौ नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखना।

संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पिटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो।